रंग खुशबू फूल महक ना ही देखी कोई सज धज, सूखे पत्ते सी भटक रही है जिंदगी जैसे कोरा कागज।

इश्क में अच्छा नहीं लेता रहे तू मेरा इम्तिहान, कहीं ऐसा ना हो जिस्म से निकल जाए ये जान।

रोते रहे जिंदगी के समंदर में तूफान बवंडर खूब गए, सोचा था साहिल पे मुस्कुराएंगे किनारे पे आके।

तेरे होते हुए भी आज मेरा प्यार मुझसे जुदा है। मैं क्यों और कैसे मानूं, मैं कैसे कहूं तू खुदा है।

बस यही तो किया था कि हम जरा हौसला मंद हुए, फिर जिंदगी के दरवाजे क्यों हमारे लिए ही बंद हुए।

पैर थकेंगे, आंसू बहेंगे, जिंदगी में किसको मिला आराम है, न सोच सफर अभी कितना है, बस चलते रहना तेरा काम है।

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला जल्ले।
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ दिल की बात साहिल के साथ, ओनली ऑन रेडियो चैनल 90.4 FM, हर दिल की धड़कन।

0: हाय मैं हूँ आरजे ज्यू.
1: हेलो मैं हूँ आरजे दीवा.
2: हाय मैं हूँ आरजे असरफ.
3: हाय मैं हूँ आरजे साहिल मुजफ्फर और आप सुन रहे हैं रेडियो चिनार 90.4 FM हर

0: हंगामा ये नहीं हंगामा होगा।
1: आएगी असरा हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: मदद करने के बजाय आप हमें ऐसे छोड़कर जा रहे हैं।
1: देखिए 20 दिन से हम आपकी मदद ही कर रहे हैं, हम आपको जानते भी नहीं हैं और ना ही आप हमें अपने बारे में कुछ बता रही हैं। यहाँ से आप अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते अपने घर, ये रखिए, ये आपकी हिफाजत करेगा।
0: मैं आपके घर तक आपके साथ चलूं, उसके आगे मैं खुद चली जाऊंगी।

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला जल्ले।
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ दिल की बात साहिल के साथ, ओनली ऑन रेडियो चैनल 90.4 FM, हर दिल की धड़कन।

रिजनल की हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी पर आप एंजॉय कर रहे हैं मजेदार शो व्हाट्सअप। मैं हूं आपका साथी आरजी ज्यूस। दोस्तों फॉलो शेयर सब्सक्राइब करें रेडियो चुनार के ऑफिशियल हैंडल्स को फेसबुक यूट्यूब इंस्टाग्राम एक्स पर, साथ ही डाउनलोड करें हमारा ऑफिशियल ऐप प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से, और ऐप डाउनलोड करते ही आप हमें सुन पाएंगे लाइव दुनिया के किसी भी कोने में। और दिल की धड़कन रेडियो चुनार 90.4 FM, ये है मस्तार शो व्हाट्सअप।

0: Zeus.
1: Kom nou ja.
2: Radio Chennai. Radio Chennai. Weather update. Weather update.
3: और इस फ्रीक्वेंसी हर दिल की धड़कन रेडियो चैनल ब्रदर आइए सुनाया जाए आपको आज का वेदर। वेदर में क्या रहेगा खास, सब इंफॉर्मेशन है हमारे पास।
2: अपडेट
3: जी हाँ, वेदर का ड्रामा क्या होगा मामा, बताने से पहले बता दूं आपको, याद दिला दूं आपको कि 8899 0049 0049
2: वेदर अपडेट
3: नंबर जो आपके दिलों के कनेक्शन हमारे दिलों से जोड़ता है 8899 0049 0049। आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप या कर सकते हैं टेक्स्ट मैसेज और अपनी बात हम तक पहुंचा सकते हैं। आप डीएम भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर ज्यूस द बैड बॉय ऑफ रेडियो सर्च करके, आईडी पर डीएम करके हो सकते हैं शो में शामिल।
2: वेदर अपडेट
3: और इस फ्रीक्वेंसी हर दिल की धड़कन रेडियो चैनल। आज का वेदर होने वाला है सनी। आज दिन का मैक्सिमम टेम्परेचर रहेगा 31 डिग्री सेल्सियस।
2: रेडियो चैनल वेदर अपडेट
3: दोपहर होते होते देर आर चांसेस के बादल सूरज को ढकने की कोशिश करेंगे, बट सूरज फायर नहीं वाइल्ड फायर बन के चमकेगा।
2: रेडियो चेन्नई वेदर अपडेट
3: यूवी इंडेक्स अभी के लिए मॉडरेट पर, ह्यूमिडिटी 54%, विंड स्पीड 0 किलोमीटर, विजिबिलिटी 4 किलोमीटर। आज का सनराइज हुआ 5:20 पर, आज का सनसेट होगा 7:43 पर।
4: चंदारे कभी तो समी पर,
3: जी हाँ चंदा का तो नहीं पता, लेकिन सूरज आ चुका है, तप रहा है। और अगर आप बाहर जा रहे हैं तो प्लीज मेक श्योर कि आप हाइड्रेटेड रहे, और जो पीक आवर्स रहते हैं गर्मी के जैसे दोपहर के आसपास, अगर जरूरी नहीं है तो बाहर ना जाए, एसी फैन वगैरह में बैठे रहें।

अडिटेड रखे खुद को, ठंडा रहे, और अगर गाड़ी वगैरह में ट्रैवल कर रहे तो एसी भी मॉडरेट पर रखे, ऐसा ना हो कि एब्रप्ट एक्सपोजर हो जाए आपकी बॉडी को। विशिंग यू ऑल अ ग्रेट डे अहेड। रेडियो चुनाव 90.4 FM पर मैं हूँ जॉक्सिस, मेरी जान से डेहक दरकाते रहो।

0: bunch of zoos. कौन आया?
1: वायरल है तभी व्हाट्सएप पे
2: व्हाट्सएप पे
1: तभी
3: वायरल ऑन शो व्हाट्सएप
2: दोस्तों रेडियो चैनल की हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी पर मजेदार शो व्हाट्सएप और व्हाट्सएप शो का सेगमेंट वायरल ऑन व्हाट्सएप क्योंकि जब वायरल होता है व्हाट्सएप पर आ ही जाता है।

लेंसेज जिसे एआई के साथ एम्बेड करके यूज किया जा सकता है। उसके अलावा सैमसंग ने रोलेबल फोन्स को भी पेटेंट करा रखा है और इसके अलावा गैलेक्सी वॉच एक प्रोजेक्टर के साथ ये भी पेटेंट करा चुका है और फ्लाइंग ड्रोन जिसके पास एक अपना डिस्प्ले है मतलब फ्लाइंग डिस्प्ले ड्रोन सैमसंग पेटेंट करा चुका है और उसके साथ पेटेंट करा चुका है फोन जो कि रिस्ट वॉच की तरह आपकी बाजू के साथ चिपका रहता है और ट्रांसपेरेंट गैलेक्सी फोन भी लिस्ट में है। उसके अलावा गैलेक्सी रिंग जिस पर एक स्क्रीन भी है और ट्राईफोल्ड फोन भी इस लिस्ट में मौजूद है, साथ ही साथ एक फोल्डेबल गेमिंग हैंड हेल्ड भी मौजूद है इस लिस्ट में, साथ ही सैमसंग एयर ग्लासेस भी। मतलब सैमसंग पूरी तरह से मन बना चुका है कि भैया पतंग तो हम ही लूट कर ले जाएंगे। रेडियो चुनाव की हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी पर एवरीबॉडी इज ला ला ला। इस मेरी जान इस मस्तार शो वॉस अप सो से ला ला एंड स्टे हक्ड टू द हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी। मैं हूं चाक्सूस, तड़काते रहो।

वायरल ऑन व्हाट्सएप पर आइए बात करते हैं सैम सैम की, क्योंकि ये सैम सैम है मेरी जान, हैंक नहीं मारेगा। जी हाँ, सैमसंग ने कुछ पेटेंट्स ऐसे कराए हैं, जब वो दुनिया के सामने आए तो सबका एक्सप्रेशन ब्रह्मान है कि जो मुद्रा है उसमें फंस गया। अब सैमसंग के जो पेटेंट्स है कुछ इस तरह से है, गौर फरमाइए। सैमसंग स्मार्ट कॉन्टैक्ट

0: हूँ आरजे ज्यूस।
1: हेलो, मैं हूँ आरजे दीबा।
2: हाय, मैं हूँ आरजे असरफ।
3: हाय, मैं हूँ आरजे साहिल मुजफ्फर और आप सुन रहे हैं रेडियो चिनार 90.4 एफएम, हर दिल की धड़कन।
4: दोस्तों, हर दिल की धड़कन रेडियो चिनार 90.4 एफएम शो व्हाट्सअप और व्हाट्सअप शो में आज का कोट ऑफ द डे। आज का कोट कहता है, लाइफ विल नेवर वेट फॉर यू टू बी अप एंड ओके, गेट अप, कैरी योर बर्डन एंड कीप गोइंग। हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी, हर दिल की धड़कन, स्टे हुक्ड, धड़काते रहो।
5: ए दिल दे

0: bunch of Zeus. Kona, jo.
1: Zeus.
2: Aur is frequency hai dil ki dhadkan radio chana 90.4 FM. Ab enjoy kar rahe hain mastar show, WhatsApp show mein aaj ka टॉपिक बताने से पहले बता दूं आपको, याद दिला दूं आपको कि दिलों के तार आपने भी हमारे साथ जोड़ने हैं। नंबर यहाँ पर कॉल है क्यों करे, व्हाट्सएप या है क्यों करे टेक्स्ट मैसेज, तो पानी कथा इस टाइम बात नहीं। और दिल की धड़कन रेडियो चैनल 90.4 FM इज 8899-0494 कॉल व्हाट्सएप या टेक्स्ट मैसेज, हमें आपके प्यार का है इंतजार। और इस फ्रीक्वेंसी हर दिल की धड़कन मैं हूं जॉक ज्यूस, हमारे साथ जुड़े हैं मुताइक लिखते हैं, सर फर्स्ट टाइम मैसेज कर रहा हूँ एंड इट्स फर्स्ट टाइम कि मैं किसी के साथ ऐसे जुड़ा हूँ रेडियो के थ्रू, अदरवाइज मेरे पास सभी के नंबर्स है। वाओ, साउंड्स इंप्रेसिव एंड इज लाइक कि मज़ा आता है रेडियो चुनाव सुनने का, बस ये है कि कुछ और ट्रांसमिशन इम्प्रोवाइज करने की ज़रूरत है। देखिए दोस्त, उस पर काम चल रहा है, एज आई हैव बीन सेइंग फ्रॉम लास्ट कपल ऑफ मंथ्स दैट वी आर गोइंग फॉर एन अपग्रेड, तो धीरे धीरे जो है चीज़ें ट्रैक पर आ रही है एंड दे आर मूविंग टूवर्ड्स बेटरमेंट, सो इट्स एक्सपेक्टेड दैट आने वाले वक्त में दैट योर विश विल बी फुलफिल्ड। थैंक यू सो मच मुताई हमसे जुड़ने के लिए। राजा हमारे साथ जुड़े हैं, लिखते हैं राजा सर मजा है, फैन हूं आपका। देखिए दोस्त, फैन नहीं फैमिली है आप हमारी, आप लोगों की वजह से हम, थैंक यू सो मच राजा हमसे जुड़ने के लिए। याद रखिए 8899-0494 इज द नंबर। और आज व्हाट्सएप शो में हम बात करने वाले हैं हाउ वी कैन बी अनस्टॉपेबल। जी हाँ, कैसे खुद को मोटिवेट करना है, प्लान्स कैसे होने चाहिए और कैसे अपने ब्रेन को ट्रेन करना है, आज बात होगी हाउ टू बी अनस्टॉपेबल। हर स्प्रीक्वेंसी हर दिल की धड़कन रेडियो चैनल 90.4 FM, सिटी हक धड़काते रहो।

बद्दुआ लेंगे, मुझे लगता है कि एवी बद्दुआ लेंगे, अपने साफ हाथ गंदे करा लेंगे, मुझे छोड़ के जाने वाले जा छोड़ दिया तुझको, जिसका मरा हुआ जमीर हम उसको मार के क्या लेंगे।

0: to Zeus. कौन आया?
1: और इस फ्रीक्वेंसी ऑफ नॉर्थ कश्मीर आप एंजॉय कर रहे हैं मस्तार शो. व्हाट्सअप शो में बात हो रही है आज हाउ यू कैन बी अनस्टॉपेबल. राफिया हमारे साथ जुड़ी है, दिखती है राफिया सर आज भी मैसेज कर रही है, उम्मीद करते हैं शो में शामिल जरूर करेंगे. अनस्टॉपेबल होने के लिए हमें चाहिए कि मोटिवेशनल बुक्स पढ़े. देखिए राफिया, आई बिलीव कि जब आप किसी का लिखा पढ़ते हैं इट मोटिवेट्स यू फॉर गुड, बट अगर आप अपने अंदर एक मोटिवेशन क्रिएट करें, आपका गोल क्लियर हो, आपको ये पता हो कि क्या करना है क्या नहीं करना है, देन यू डोंट नीड एनी काइंड ऑफ बुक्स. बस ये है कि हाँ, अपना जो विजन है उसे क्लियर करने के लिए यू कैन टेक रेफरेंसेस, बट रीडिंग अ बुक फॉर मोटिवेशन और मोटिवेटिंग योरसेल्फ, सबकी अपनी आवृत्ति होती है. बुक कैन नेवर जस्टिफाई कि आप अपनी जिंदगी कैसे बिता सकते हैं, बट ये इट कैन गिव यू अ क्लियर विजन फॉर सम रीजंस बट नॉट द होल माइंडसेट. थैंक यू सो मच हमसे जुड़ने के लिए. और दोस्तों, जब भी हम व्हाट्सएप शो की बात करते हैं तो आप भी अपनी बात हम तक पहुंचा सकते हैं. 8899904904 इज द नंबर. और हाउ यू कैन बी अनस्टॉपेबल, यू नीड टू मास्टर योर माइंडसेट. अपने फेलियर्स को गले लगाना, अपने इनर नैरेटिव्स को कंट्रोल करना, और साथ ही साथ जो भी आपकी मेंटलिटी को हार्म करते हैं या मेंटल पीस को हार्म करते हैं उन्हें डिसीव करना. प्रोसेस ओवरकम को, आउटकम्स को फोकस में रखना और अपनी एनर्जी को गार्ड करना. देखिए, जब भी आप किसी ऐसी बात में उलझते हैं, समहाउ यू आर गिविंग अप योर एनर्जी, और वही चीज़ है जो आपको कमज़ोर बनाती है. लोग कहते रहते हैं, लोग करते रहते हैं जस्ट ग्रैब योर अटेंशन. सो पॉइंट इज हाउ यू डील विद द फूल्स, एंड फूल्स के साथ फूल बन के रहे और अपनी जिंदगी को कूल बना के रखें.
2: ये कीड़े कुछ भी लिखवाते हैं, कुछ भी बुलवाते हैं.
1: रेडियो चैनल की हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी पर बातचीत जारी है. फिलहाल कुछ ट्रैक्स आपके लिए, और ट्रैक्स के उस पार वेस्टर्न म्यूजिकल शो आई फील गुड.
2: बाहर से काफी मिस.
1: जी हाँ, आई फील गुड अ शो डेडिकेटेड टू द लवर्स ऑफ वेस्टर्न म्यूजिक. कुछ ही देर का इंतजार, देते रहे प्यार हर दिल की धड़कन को, धड़काते रहो मेरे यार.
2: पसंद नहीं थे धंधे, अंदर ही
1: रेडियो चैनल से डायरेक्ट जगजीत के साथ धड़काते रहो.

0: मैं हूँ आरजे सिक्स। जब भी हम किसी नई जगह जाते हैं तो अक्सर उस एरिया के बारे में लोगों के जहन पे जो इम्प्रेशन सबसे पहले पड़ता है वो है वहाँ की ट्रैफिक मैनेजमेंट देखकर कि वहाँ के लोग कितने डिसिप्लिन्ड और सिविलाइज्ड हैं। हम आए दिन देखते हैं कि एक्सीडेंट्स में ट्रैफिक रूल्स की वायलेशन की वजह से कितनी जाने गंवानी पड़ती है। ट्रैफिक पुलिस और डिपार्टमेंट्स की अपनी जिम्मेदारी है, लेकिन हम पर भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम ट्रैफिक रूल्स को रिलीजियसली फॉलो करें। रेडियो चुनार से हमारी यही गुजारिश है कि हम सब ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें ताकि हमारा सफर खूबसूरत और सुहाना बन जाए।
1: हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू।

0: Ja.
1: हाय, मैं हूँ आरजे साहिल मुजफ्फर और आप सुन रहे हैं रेडियो चिनार 90.4 FM।

0: छोटा लंदन। जी हाँ, एप्पल टाउन सोपोर की मेहमान नवाजी से लेकर
1: अदब की नगरी बांडीपोरा तक,
0: वादी लोलाब के दिलकश नजारों से लेकर
1: गुलमर्ग की खूबसूरत फिजाओं तक,
0: बारामुल्ला से बहते जहलम की रवानी से लेकर
1: जीले बुलर की दिलकश लहरों तक,
0: बस गूंजती है हवाओं में हर दिल की धड़कन।
1: रेडियो चुनार 90.4 एफएम।
2: Tech Talks with RJ Zeus.
3: Bollywood News.
4: Only on Radio Chinar 90.4.
5: I feel good.
4: A new vibe for the lovers of Western music with me, RJ Zeus.
6: RJ Zeus.

0: Jeremy. Çınar Beats ve Darce Diva only on Radio Çınar 90.4 FM. 90.4 FM.
1: अरे यार कोई एसी चला दो यार।
2: सही है सही।
1: मजा ही मजा ब्रो। चलो शुरू करते हैं।
3: देखिए शुरू तो हमारा भी हो चुका है। ये सफर जिसमें मैं अकेली नहीं होती और की मेरी पूरी वाइफ और ट्राइब भी होती है।
4: इतना हाय हुआ कि थर्मामीटर टूट गया। सही आज
3: देखिए बाहर जाते ही आज ऐसा ही होता है कि इंसान पसीने में लतमेदार बस यही है कि हाय गर्मी भैया जी। बट हम तो कह रहे हैं कि गर्मी बढ़ने वाली है और अभी तो तापमान भी बढ़ेगा क्योंकि शो चिनार बीच शुरू हुआ है।

0: बीट्स और रिपीट शो चुनाव और बीट्स आप एंजॉय कर रहे हैं ओनली ऑन रेडियो चुनाव 90.4 FM दे सारी बातें मस्ती मजाक फन एंटरटेनमेंट के अलावा दे सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती है। लाइक तो हमेशा की तरह सुपर डुपर एक्साइटेड क्योंकि भैया जी मौसम हो रखा है एकदम ही ऑसम और मज़ा आ रहा है। मुझे तो बड़ा मज़ा आ रहा है क्योंकि ये गर्मियों का भी एक अलग ही मज़ा है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि गर्मी बहुत ज़्यादा है, वो तो है, बट खुद को हाइड्रेटेड रखना या समर का भी एक अलग ही वाइब, एक अलग ही ट्राइब है। आई नो कि बहुत सारे लोग जो है ना इस मौसम के लिए बस इंतजार कर रहे होते हैं। अब देखिए इंतज़ार हमारा भी ख़त्म हो चुका है। अभी देखिए कि कल ही तो मैंने बोला था भाई और अभी तो मैं आ चुकी हूँ। अब मेरा तो काम है कि 12 बजे आ जाओ और सुन रखो जी बल्ले बल्ले और बहुत सारी बातें भी है और आप हैं हम हैं। मुझे लगता है कि मौका भी है दस्तूर है कहाँ जाने हुजूर और आपकी क्या है वो बातें जो सुबह सुबह की बेहतरीन सी थॉट आपने दिन की शुरुआत की या फिर कोई अनयूजुअल सा एक्सपीरियंस आप सच में चाहते हैं कि वो पहुँचे वहाँ वहाँ तक जहाँ तक पहुँचती है रेडियो चुनाव की आवाज़। So I'm here, why to go here and there, Radio Chinar, the hottest frequency of Kashmir, Radio Chinar 90.4 FM. Hala, just baat, aur kya halat? Mere saath share kijiye.
1: Tera sharmana, meri janna kabhi rakh lo.
0: देखिए शर्माना काहे को है, देखिए बैक टू बैक सॉन्ग से दैट विदाउट एनी है अब गुफ्तगु तो है ही और क्योंकि है मैं और आप हैं और मौका तो है ही चौगा मार लीजिए बैक टू बैक सॉन्ग्स एंजॉय कीजिए ओनली ऑन हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ कश्मीर रेडियो चैनल 90.4 FM आप सुन रहे हैं हर दिल की धड़कन।

0: बिहार की, वो जा रहा है पूरी शबम गुजार की। वीरा है मैं कदा खुमो सावर उदासी, तुम क्या गए कि रूठ गए दिन बाहर।
1: Chinar Beats with Harshi Deva, only on Radio Chinar 90.4 FM.

0: हंगामा हो गया तब।
1: असरा आ गई तो
0: करो हंगामा आज असरा के साथ
1: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

Jar Beats with Harshi Diva, only on Radio Channel 90.4 FM.

0: It's on repeat.
1: बेस ऑन रिपीट शो चुनाव बीस सब एंजॉय कर रहे हैं ऑन योर रेडियो चुनाव 90.4 एफएम। ढेर सारी बातें हो रही हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट नेशनल हाईवे ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। नेशनल हाईवे की बात आपको बता दें कि नेशनल हाईवे

बहुत साइड से ट्रैफिक का लूप किया जा रहा है, काफ़ी स्मूथ ट्रैफिक है. एंड बी कॉशियस, बी केयरफुल वाइल ड्राइविंग, बिकॉज हमें पता है कि हमारे कंधों पर एक जिम्मेदारी है जब हम गाड़ी चलाते हैं. सो उसे हमें बखूबी निभाना है, गाइडलाइंस के मुताबिक ही हम अपना ट्रैवल डेस्टिनेशन प्लान बनाएं, कैसे जाना है, कौन सा रूट अपनाना है, कब टू वे ट्रैफिक है, कब वन वे ट्रैफिक. फिलहाल के लिए आज टू वे ट्रैफिक है, आप आराम से आ सकते जा सकते हैं, अपनी डेस्टिनेशन को आराम से पार करके आप इंजॉय कर सकते हैं अपने ट्रैवल को. फिलहाल के लिए बस ये है कि अगर आप कहीं जा रहे आ रहे तो ज़रूरी है कि सीट बेल्ट लगा के गाड़ी चलाए, गलत जगह पे ओवरटेक करना rather not fair, क्योंकि वही है ना कि फिर हड़बड़ी में गड़बड़ी हो जाती है और फिर हमें फ़ाइन भरना पड़ता है, और हम तो नहीं चाहते कि आपको कोई भी नुकसान हो. And we care for you, we mean it. और हम चाहते हैं कि आप हमेशा अपनी जो डेस्टिनेशन है उसको अच्छे से पार करें, आप आराम से जाए, स्मूथली जाए, आपको किसी भी परेशानी का सामना ना करना पड़े. फिलहाल के लिए अगर आप कुछ कहना चाहते हैं, कोई अनयूजुअल सा थॉट आपको दिमाग में आ रहा है, कोई एक्सपीरियंस है वाइल ड्राइविंग, 8999-0494 पर कॉल कीजिए, टेक्स्ट व्हाट्सएप कीजिए, शो चुनाव अपडेट का हिस्सा बन जाए. देखिए आपके यहाँ का दरवाज़ा आपको पता ही है, बस नंबर है 1-888-9-0-4-9-0-4 और उसके अलावा टेक्स्ट व्हाट्सएप आप करके शो में शामिल हो सकते हो. जल्दी कीजिए, शो का ऐसा बन जाए. आप सुन रहे हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ कश्मीर रेडियो 90.4 FM.

Jeremy. Chinar Beats with Harshadeepa on Radio Chinar 90.4 FM.

0: diva.
1: Khabar online. जी हाँ, खबर ऑनलाइन लेकर मैं हाजिर हूँ उन बच्चों की खबर विस्तार संत। क्या चर्चित खबर और क्या है ट्रेंडिंग सोशल मीडिया पर,
2: बदलेंगे ब्रेकिंग न्यूज में आज की खबर।
1: तो बता दें आपको कि कैसी मूवी जो सिर्फ 4 दिन पहले रिलीज हुई और ज़्यादा कुछ खास तो नहीं कर पाई बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पे, लेकिन बात हो रही है फन मूवी है। बहुत सारे लोग जो है मूवी की तारीफ कर रहे हैं और बहुत सारे लोगों का कहना है कि बकवास है ये मूवी। ये समझाओ कि अबाउट है जवानी तो इश्क होना है, इश्क तो हो गए लोगों को बहुत पहले सॉन्ग के साथ, लेकिन मूवी कुछ खास नहीं कर पाई बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन एंड दैट इज 42 करोड़ वर्ल्ड वाइड एंड इट्स द फर्स्ट 4 डेज विद रुपीज 27.5 करोड़ इंडियन नेट कलेक्शन एंड और अगर हम ओवरसीज की बात करें दैट्स 9.5 करोड़। अब देखिए कि डेविड धवन की मूवी है, यानी कि डेविड धवन ये इस मूवी के डायरेक्टर है और वरुण धवन उनके बेटे हैं। तो देखिए पापा कहते हैं बड़ा नाम तो है, वरुण धवन ने ठीक ठाक तो इंडस्ट्री में पैर जमाए हैं, लेकिन अब अभी कुछ खास नहीं कर पा रहे हैं। देखिए रीमेक बना के ये कह रहे लोग कि कुछ खास नहीं होता, कुछ असली टैलेंट है तो कुछ अलग करके दिखाओ, ये बहुत सारे लोगों का कहना है। और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि मूवी अच्छी है, फन है, क्योंकि वरुण धवन को देखते भी है फन, उनके फन फनी अंदाज में, और इनकी ये मूवी भी कुछ लोगों को बहुत ही अच्छी लगी है। अगर आपने मूवी देखी है मुझे बताइए कैसी मूवी है, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, 8899049044 करके शो में हमें बताइए।
3: लल्ला लल्ला लोरी दूध की कटोरी, अब कैसे संभालूं मैं दो लव स्टोरी।
1: हम तो संभाल पाते हैं बैक टू बैक सॉन्ग्स दैट डू विदाउट एनी एट्री म्यूजिक हवा देता है रेडियो चुनार पर पूरा सबसे ज्यादा एंजॉय कीजिए। मैं हूं दीपा, आप सुन रहे हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ कश्मीर रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: ने दिया धोखो रणथावा उसको ठोको ही ठोको।
1: I will not give you that मौको। अभी तो कुछ दिनों में मेहंदी संगीत एंड रोको।

0: यार ये बानी और प्रीत का आमना सामना ना हो जाए यार।
1: अरे लंदन है लंदन यार। हाँ। दादर स्टेशन थोड़ी है कि बानी और प्रीत एक दूसरे से टकरा जाएंगे।
2: तुम यहाँ क्या कर रहे हो?

0: खामोशियाँ जिनको अच्छी लगती है वो फिर बोला नहीं करते।
1: अरे वो तब था लेकिन अब सब बोलेंगे।
0: बोलेंगे जरूर बोलेंगे
1: क्योंकि आपकी आवाज को अंदाज देने के लिए
0: सुनिए रेडियो गर्ल, अ शो डेडिकेटेड टू ऑल द फीमेल्स आउट देयर
1: एवरी वेंसडे एंड सैटरडे।
0: रेडियो गर्ल्स ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: हेलो, पापा के जिद के आगे हार गए। शादी हो रही है मेरी, हो सके तो भूल जाना।
1: ऐसे कैसे पूछूं तुम्हें, प्यार छूटा नहीं है मेरा।

0: छोटा लंदन। जी हाँ, एप्पल टाउन सोपोर की मेहमान नवाजी से लेकर
1: अदब की नगरी बांडीपोरा तक,
2: वादी लोलाब के दिलकश नजारों से लेकर
1: गुलमर्ग की खूबसूरत फिजाओं तक,
0: बारामुल्ला से बहते जहलम की रवानी से लेकर
1: जीले बुलर की दिलकश लहरों तक,
2: बस गूंजती है हवाओं में हर दिल की धड़कन।
1: रेडियो चुनार 90.4 FM।

स्वच्छ भारत अभियान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक ऐसा इनिशिएटिव जो एक मिशन नहीं बल्कि एक इमोशन है। सफाई और साफ रहना हर एक को पसंद है और हम अपने घरों को साफ रखते रखते अपने माहौल को इतना गंदा कर देते हैं कि फिर हमें खुद ही शर्मिंदगी होती है। म्युनिसिपैलिटीज और सफाई कर्मचारी हर दिन अपने हाथों से हमारी डाली हुई गंदगी को साफ करते हैं ताकि हम एक साफ माहौल में सांस ले सके। कितना अच्छा होता कि अगर हम इन म्युनिसिपैलिटीज और सरकारी इदारों के साथ अपने माहौल को साफ सुथरा रखने में कोऑपरेट करते और इस बात का सबूत देते दैट वी आर रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स ऑफ आवर सोसाइटी। तो आइए स्वच्छ भारत मिशन में हम अपना योगदान देकर इस मिशन को कामयाब बनाए क्योंकि स्वच्छता ही सेवा है। हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू।

0: पानी। पानी एक ऐसी नियामत है जिसके बगैर हम अपनी जिंदगी का तसव्वुर नहीं कर सकते। दुनिया का सिर्फ 3% पानी ही पीने के लायक है, और इसके बावजूद भी क्या हम पानी का सही इस्तेमाल करते हैं? कुदरती आबी वसाइल हम सब के लिए बहुत बड़ी देन है, और इनको आलूदा होने से बचाना और फ्यूचर जनरेशंस के लिए ये दौलत महफूज रखना हमारा फर्ज है। पानी बचाना सिर्फ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बल्कि एक नेसेसिटी है। पानी का सही इस्तेमाल करना, बारिश का पानी जमा करना और बाकी लोगों को पानी की बचत करने के लिए एनकरेज करना वक्त की अहम जरूरत है। आइए हम पानी का सही इस्तेमाल करके अपने आने वाले कल को महफूज बनाएं, क्योंकि जल ही कल है, और कल के लिए सिर्फ प्यास नहीं पानी भी रखिए।
1: हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू।

0: हंगामा ये नहीं हंगामा होगा,
1: आएगी असरा हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

बदुआ लेंगे, मुझे लगता है कि एवी बदुआ लेंगे, अपने साफ हाथ गंदे करा लेंगे, मुझे छोड़ के जाने वाले जा छोड़ दिया तुझको, जिसका मरा हुआ जमीर हम उसको मार के क्या लेंगे।

0: मैं हूं आरजे ज़ियूस। जब भी हम किसी नई जगह जाते हैं तो अक्सर उस एरिया के बारे में लोगों के जहन पे जो इम्प्रेशन सबसे पहले पड़ता है वो है वहाँ की ट्रैफिक मैनेजमेंट देखकर कि वहाँ के लोग कितने डिसिप्लिन्ड और सिविलाइज्ड हैं। हम आए दिन देखते हैं कि एक्सीडेंट्स में ट्रैफिक रूल्स की वायलेशन की वजह से कितनी जानें गंवानी पड़ती हैं। ट्रैफिक पुलिस और डिपार्टमेंट्स की अपनी जिम्मेदारी है, लेकिन हम पर भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम ट्रैफिक रूल्स को रिलीजियसली फॉलो करें। रेडियो चुनार से हमारी यही गुजारिश है कि हम सब ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें ताकि हमारा सफर खूबसूरत और सुहाना बन जाए।
1: हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू।

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा। तब
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ।
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

Jar Beats with Harshadeva, only on Radio Channel 90.4 FM.

0: खामोशियाँ जिनको अच्छी लगती है वो फिर बोला नहीं करते।
1: अरे वो तब था लेकिन अब सब बोलेंगे।
0: बोलेंगे जरूर बोलेंगे
1: क्योंकि आपकी आवाज को अंदाज देने के लिए
0: सुनिए रेडियो गर्ल, अ शो डेडिकेटेड टू ऑल द फीमेल्स आउट देयर
1: एवरी वेंसडे एंड सैटरडे।
0: रेडियो गर्ल्स ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: हेलो, पापा की जिद के आगे हार गए। शादी हो रही है मेरी, हो सके तो भूल जाना।
1: ऐसे कैसे भूल जाऊं तुम्हें, प्यार छोटा नहीं है मेरा।

0: छोटा लंदन। जी हाँ, एप्पल टाउन सोपोर की मेहमान नवाजी से लेकर
1: अदब की नगरी बांडीपोरा तक,
2: वादिय लोलाब के दिलकश नजारों से लेकर
1: गुलमर्ग की खूबसूरत फिजाओं तक,
0: बारामुल्ला से बहते जहलम की रवानी से लेकर
1: जीले बुलर की दिलकश लहरों तक,
2: बस गूंजती है हवाओं में हर दिल की धड़कन।
1: रेडियो चुनार 90.4 FM।

स्वच्छ भारत अभियान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक ऐसा इनिशिएटिव जो एक मिशन नहीं बल्कि एक इमोशन है। सफाई और साफ रहना हर एक को पसंद है और हम अपने घरों को साफ रखते रखते अपने माहौल को इतना गंदा कर देते हैं कि फिर हमें खुद ही शर्मिंदगी होती है। म्युनिसिपैलिटीज और सफाई कर्मचारी हर दिन अपने हाथों से हमारी डाली हुई गंदगी को साफ करते हैं ताकि हम एक साफ माहौल में सांस ले सके। कितना अच्छा होता कि अगर हम इन म्युनिसिपैलिटीज और सरकारी इदारों के साथ अपने माहौल को साफ सुथरा रखने में कोऑपरेट करते और इस बात का सबूत देते दैट वी आर रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स ऑफ आवर सोसाइटी। तो आइए स्वच्छ भारत मिशन में हम अपना योगदान देकर इस मिशन को कामयाब बनाए क्योंकि स्वच्छता ही सेवा है। हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू।

पानी। पानी एक ऐसी नामत है जिसके बगैर हम अपनी जिंदगी का तसव्वुर नहीं कर सकते। दुनिया का सिर्फ 3% पानी ही पीने के लायक है, और इसके बावजूद भी क्या हम पानी का सही इस्तेमाल करते हैं? कुदरती आबी वसाइल हम सब के लिए बहुत बड़ी देन है, और इनको आलूदा होने से बचाना और फ्यूचर जनरेशंस के लिए ये दौलत महफूज रखना हमारा फर्ज है। पानी बचाना सिर्फ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बल्कि एक नेसेसिटी है। पानी का सही इस्तेमाल करना, बारिश का पानी जमा करना और बाकी लोगों को पानी की बचत करने के लिए एनकरेज करना, वक्त

0: की अहम जरूरत है। आइए हम पानी का सही इस्तेमाल करके अपने आने वाले कल को महफूज बनाएं, क्योंकि जल ही कल है और कल के लिए सिर्फ प्यास नहीं पानी भी रखिए।
1: हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू।

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: हाय, मैं हूँ आरजे साहिल मुजफ्फर और आप सुन रहे हैं रेडियो चिनार 90.4 FM।
1: Chinar Beats with Harshadeva, only on Radio Chinar 90.4 FM.

Chinar Beats with Harshadeva, only on Radio Chinar 90.4 FM.

0: खामोशियाँ। जिनको अच्छी लगती है वो फिर बोला नहीं करते।
1: अरे वो तब था, लेकिन अब सब बोलेंगे।
0: बोलेंगे, जरूर बोलेंगे,
1: क्योंकि आपकी आवाज को अंदाज देने के लिए सुनिए रेडियो गर्ल,
0: अ शो डेडिकेटेड टू ऑल द फीमेल्स आउट देयर,
1: एवरी वेंसडे एंड सैटरडे।
0: रेडियो गर्ल्स ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM। हाय, मैं हूँ आरजे रीवा और आप सुन रहे हैं रेडियो चुनार 90.4 FM।
2: The game is on. Tune into Radio Chennai 90.4 FM. Game on with RJ Asra. Only on Radio Chennai 90.4 FM.
3: Chinar Beats with RJ Deva, only on Radio Chinar 90.4 FM.

Chinar Beats ve Darje Diva, only on Radio Chinar 90.4 FM.

स्वच्छ भारत अभियान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक ऐसा इनिशिएटिव जो एक मिशन नहीं बल्कि एक इमोशन है। सफाई और साफ रहना हर एक को पसंद है और हम अपने घरों को साफ रखते रखते अपने माहौल को इतना गंदा कर देते हैं कि फिर हमें खुद ही शर्मिंदगी होती है। म्युनिसिपैलिटीज और सफाई कर्मचारी हर दिन अपने हाथों से हमारी डाली हुई गंदगी को साफ करते हैं ताकि हम एक साफ माहौल में सांस ले सके। कितना अच्छा होता कि अगर हम इन म्युनिसिपैलिटीज और सरकारी इदारों के साथ अपने माहौल को साफ सुथरा रखने में कोऑपरेट करते और इस बात का सबूत देते दैट वी आर रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ आवर सोसाइटी। तो आइए स्वच्छ भारत मिशन में हम अपना योगदान देकर इस मिशन को कामयाब बनाए, क्योंकि स्वच्छता ही सेवा है। हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू।

0: मैं हूं आरजे ज्यूस। जब भी हम किसी नई जगह जाते हैं तो अक्सर उस एरिया के बारे में लोगों के जहन पे जो इम्प्रेशन सबसे पहले पड़ता है वो है वहाँ की ट्रैफिक मैनेजमेंट देखकर कि वहाँ के लोग कितने डिसिप्लिन्ड और सिविलाइज्ड हैं। हम आए दिन देखते हैं कि एक्सीडेंट्स में ट्रैफिक रूल्स की वायलेशन की वजह से कितनी जानें गंवानी पड़ती हैं। ट्रैफिक पुलिस और डिपार्टमेंट्स की अपनी जिम्मेदारी है, लेकिन हम पर भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम ट्रैफिक रूल्स को रिलीजियसली फॉलो करें। रेडियो चुनार से हमारी यही गुजारिश है कि हम सब ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें ताकि हमारा सफर खूबसूरत और सुहाना बन जाए।
1: हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू।

0: पानी। पानी एक ऐसी नामत है जिसके बगैर हम अपनी जिंदगी का तसव्वुर नहीं कर सकते। दुनिया का सिर्फ 3% पानी ही पीने के लायक है, और इसके बावजूद भी क्या हम पानी का सही इस्तेमाल करते हैं? कुदरती आबी वसाइल हम सब के लिए बहुत बड़ी देन है, और इनको आलूदा होने से बचाना और फ्यूचर जनरेशंस के लिए ये दौलत महफूज रखना हमारा फर्ज है। पानी बचाना सिर्फ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बल्कि एक नेसेसिटी है। पानी का सही इस्तेमाल करना, बारिश का पानी जमा करना और बाकी लोगों को पानी की बचत करने के लिए एनकरेज करना वक्त की अहम जरूरत है। आइए हम पानी का सही इस्तेमाल करके अपने आने वाले कल को महफूज बनाएं, क्योंकि जल ही कल है, और कल के लिए सिर्फ प्यास नहीं पानी भी रखिए।
1: हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू।

0: छोटा लंदन। जी हाँ, एप्पल टाउन सोपोर की मेहमान नवाजी से लेकर
1: अदब की नगरी बांडीपोरा तक
0: वादिये लोलाब के दिल

0: दिलकश नजारों से लेकर
1: गुलमर्ग की खूबसूरत फिजाओं तक,
0: बारामुल्ला से बहते जहलम की रवानी से लेकर
2: जीले वुलर की दिलकश लहरों तक,
0: बस गूंजती है हवाओं में हर दिल की धड़कन।
2: रेडियो चुनार 90.4 FM।
3: दिल को
4: करार आ जाए
3: जब भी आए
4: सुहानी शाम,
3: दबी यादें महक जाए
4: जब भी आए
3: सुहानी शाम,
4: सुनिए सुहानी शाम
3: हर रोज सिर्फ रेडियो चुनार
4: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए,
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए,
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम,
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: रेडियो चनार की हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम।
1: जिंदा जिंदा जिंदा जिंदा जिंदा जिंदा जिंदा जिंदा जिंदा जिंदा जिंदा जिंदा जिंदा जिंदा जिंदा जिंदा जिंदा जिंदा जिंदा जिंदा जिंदा जिंदा जिंदा जिंदा जिंदा जिंदा जिंदा जिंदा जिंदा जिंदा जिंदा जिंदा जिंदा जिंदा जिंदा जिंदा जिंदा जिंदा जिंदा जिंदा जिंदा जिंदा जिंदा जिंदा जिंदा जिंदा जिंदा जिंदा जिंदा जिंदा जिंदा जिंदा जिंदा जिंदा जिंदा जिंदा जिंदा जिंदा जिंदा जिंदा जिंदा जिंदा जिंदा जिंदा जिंदा जिंदा जिंदा जिंदा जिंदा जिंदा जिंदा जिंदा जिंदा जिंदा जिंदा जिं

0: दिल को
1: करार आ जाए,
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: तभी यादें महक जाए,
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए,
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए,
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम,
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: तभी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4 FM।

0: रेडियो चनार की हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम।
1: तुझे याद है ना आज पापा तुझसे बात करना।

0: वाले हैं,
1: उन्हीं से मिलने की तैयारी कर रहा हूँ।
0: सलून में?
1: लड़कों की खूबसूरती सलूनों में नहीं, बैंकों में निखरती है। अगर आज लोन पास हो गया ना, घर और घरवाली एक साथ फिक्स हो जाएंगे।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

अब मैं जो कहने जा रहा हूँ ना किसी ने कहा है ना किसी ने सुना है, मुलायजा फरमाइए हुजूर।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: FM।
2: मैं हूं आरजे ज्यूस। जब भी हम किसी नई जगह जाते हैं तो अक्सर उस एरिया के बारे में लोगों के जहन पे जो इम्प्रेशन सबसे पहले पड़ता है वो है वहाँ की ट्रैफिक मैनेजमेंट देखकर कि वहाँ के लोग कितने डिसिप्लिन्ड और सिविलाइज्ड हैं। हम आए दिन देखते हैं कि एक्सीडेंट्स में ट्रैफिक रूल्स की वायलेशन की वजह से कितनी जानें गंवानी पड़ती हैं। ट्रैफिक पुलिस और डिपार्टमेंट्स की अपनी जिम्मेदारी है, लेकिन हम पर भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम ट्रैफिक रूल्स को रिलीजियसली फॉलो करें। रेडियो चिनार से हमारी यही गुजारिश है कि हम सब ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें ताकि हमारा सफर खूबसूरत और सुहाना बन जाए।
3: हम है टीम रेडियो चिनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू।
0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: FM।
4: रेडियो चिनार 90.4 FM पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम, और आज की सुहानी शाम वीरू यानी धर्मेंद्र के नाम।

रंगत है, दिल में मोहब्बत है, क्या जिसमें औरत है, बस जन्नत ही जन्नत है।

रेडियो चिनार 90.4 एफएम पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम, और आज की सुहानी शाम वीरू यानी धर्मेंद्र के नाम।

रेडियो चिनार 90.4 FM पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम, और आज की सुहानी शाम वीरू यानी धर्मेंद्र के नाम।

रेडियो चिनार 90.4 एफएम पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम, और आज की सुहानी शाम वीरू यानी धर्मेंद्र के नाम।

रेडियो चिनार 90.4 एफएम पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम, और आज की सुहानी शाम वीरू यानी धर्मेंद्र के

रेडियो चिनार 90.4 एफएम पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम, और आज की सुहानी शाम वीरू यानी धर्मेंद्र के नाम।

रेडियो चिनार 90.4 एफएम पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम, और आज की सुहानी शाम वीरू यानी धर्मेंद्र के नाम।

रेडियो चिनार 90.4 एफएम पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम, और आज की सुहानी शाम वीरू यानी धर्मेंद्र के नाम।

रेडियो चिनार 90.4 एफएम पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम, और आज की सुहानी शाम वीरू यानी धर्मेंद्र के नाम।

रेडियो चिनार 90.4 एफएम पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम, और आज की सुहानी शाम वीरू यानी धर्मेंद्र के नाम।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: एफएम।
2: स्वच्छ भारत अभियान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक ऐसा इनिशिएटिव जो एक मिशन नहीं बल्कि एक इमोशन है। सफाई और साफ रहना हर एक को पसंद है और हम अपने घरों को साफ रखते रखते अपने माहौल को इतना गंदा कर देते हैं कि फिर हमें खुद ही शर्मिंदगी होती है। म्युनिसिपैलिटीज और सफाई कर्मचारी हर दिन अपने हाथों से हमारी डाली हुई गंदगी को साफ करते हैं ताकि हम एक साफ माहौल में सांस ले सके। कितना अच्छा होता कि अगर हम इन म्युनिसिपैलिटीज और सरकारी इदारों के साथ अपने माहौल को साफ सुथरा रखने में कॉपरेट करते और इस बात का सबूत देते दैट वी आर रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स ऑफ आवर सोसाइटी। तो आइए स्वच्छ भारत मिशन में हम अपना योगदान देकर इस मिशन को कामयाब बनाए क्योंकि स्वच्छता ही सेवा है। हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 एफएम एंड वी केयर फॉर यू।
0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: एफएम। रेडियो चिनार 90.4 एफएम पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम और आज की सुहानी शाम स्टाइल आइकन देवानंद के नाम।

रेडियो चिनार 90.4 एफएम पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम, और आज की सुहानी शाम स्टाइल आइकन देवानंद के नाम।

रेडियो चिनार 90.4 एफएम पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम, और आज की सुहानी शाम स्टाइल आइकन देवानंद के नाम।

किसी के

रेडियो चिनार 90.4 एफएम पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम, और आज की सुहानी शाम स्टाइल आइकन देवानंद के नाम।

0: आँखों में।
1: रेडियो चिनार 90.4 FM पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम, और आज की सुहानी शाम स्टाइल आइकन देवानंद के नाम।

चले गए। रेडियो चिनार 90.4 FM पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम, और आज की सुहानी शाम स्टाइल आइकन देवानंद के नाम।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: FM।

0: रेडियो चुनार की हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम।
1: दिल को
2: करार आ जाए
1: जब भी आए
2: सुहानी शाम,
1: दबी यादें महक जाए
2: जब भी आए
1: सुहानी शाम।
2: सुनिए सुहानी शाम
1: हर रोज सिर्फ रेडियो चुनार
2: 90.4
1: FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4
0: FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4
0: एफएम।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए,
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए,
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम,
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: एफएम।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: FM।

तमाशा दिखाते हैं, गिरते हैं, लड़खड़ाते हैं, शोर मचाते हैं, उनको तो आप कुछ नहीं कहते, मगर मगर

जिगर, चैन, आराम, राति, सुबह, दोपहर और शाम छीन ले जाते हैं और आप चुरा लेते हैं, सामने लूटते हैं और आप बोल नहीं पाते हैं। देखो ना, दर्द, हिस और जख्म दे जाते हैं तो आप कुछ नहीं कहते हैं, मगर

0: दिल को
1: करार आ जाए,
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए,
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम,
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: FM। दिल को
1: करार आ जाए,
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए,
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम,
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: FM।

0: कुछ नहीं चलेगा।
1: अरे अरे लेकिन लेकिन मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, क्या क्या करती हो? अच्छा अच्छा सुनो एक बात, एक बात
2: आप वन
1: लेकिन एक बात

0: बता दूं?
1: हाँ,
0: वो यहीं पर
1: यहीं है।
0: ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख दो बस समझ जाओ।
1: हाँ,

0: आप जानती हैं हम क्या गा रहे हैं?
1: मैं इतना भी नहीं समझूंगी, आप ही ने सरगम सिखा रहे थे।
0: आपको तो नहीं सिखा रहा, आपने तो अपने बाबूजी से सीखा होगा। हाँ तो कहाँ तक पहुंचे थे हम?
1: पंचम तक।
0: कैसे? कही ना।
2: सा सारे ग ग म प प म ग म प प म रे म ग।
3: हाँ।

0: ओ गुजरिया होय होय होय ओ जाने सारी नगरिया
1: आके सीधी लगी दिल पे जैसे खतरिया ओ सवरिया।

0: आए करार ओ गोरी बढ़ के बुदन तीर भी टक्कर क्या मैं करूं गोरी मुझे तुझसे है प्यार जो न तुझे देखूं न आए करार
1: हटो जाओ ना बनाओ हटो जाओ हाय हाय ना बनाओ।

0: पहले तो बांधी निगाहों की डोर, अब हमसे कहती हो चल पीछा छोड़ो गोरी, ओ नटखट ओ खटपट ओ पनघट ओ झटपट। पहले तो बांधी निगाहों की डोर, अब हमसे कहती हो चल पीछा छोड़
1: तोरे नैना ओ मीठे बहना, ओ तोरे नैना हाय हाय मीठे बहना हाय हाय। मुझको बना दे बावरिया, आके सीधी लगी दिल पे जैसे खतरिया, ओ सवरिया।

0: ये साहब माना जनाब ने पुकारा नहीं, क्या मेरा साथ भी गवारा नहीं, मुक्तुम में बन के चल दिए तन के, वल्ला जवाब तुम्हारा नहीं है, वल्ला जवाब तुम्हारा नहीं है, वल्ला जवाब तुम्हारा नहीं।
1: हम थे वो थी हम थे,
2: हम थे वो थी और समा रंगीन, समझ गए ना, जाते थे जापान पहुंच गए चीन, समझ गए ना, याने याने याने प्यार हो गए।

ने खेचा आ हा हा घबराहट में फिर अपना अपना हाथ उसने खेचा मैंने खेचा आ हा हा हम थे वो थी और हमार रंगीन समझ गए ना जाते थे जापान पहुंच गए चीन समझ गए ना याने याने याने प्यार हो गया बाजू।

0: यूं ही साथी।
1: ओए बंधी मुट्ठी लाख की और
2: रेडियो चुनाव की हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम।
1: ओए बंधी मुट्ठी लाख की और खुली तो प्यारे खाक की।

इस जमाने में तेरे सिवा तू ही बता कौन था अपना। अब ना ही कोई उम्मीद, ना ही आंखों में कोई सपना।

यहीं पे तुमको जन्म मिला है, यहीं पे तुम्हारा दम निकलेगा। देख लेना एक दिन सारी दुनिया का आसमान कम निकलेगा।

इसके हर मोड़ पे एक नई कहानी, एक नया किस्सा है। पढ़ाओ दर पढ़ाओ, जिंदगी का सफर ही कुछ ऐसा है।

0: आते।
1: गुजर बसर अब दिन रात उसके दिल में मेरा है, खबर ये भी ना रहा क्या उसका क्या मेरा है। करवटें लूं तो आहिस्ता ही पलटता हूँ, करवटें लूं तो आहिस्ता ही पलटता हूँ, क्योंकि खुशी हो या दर्द अब ये सब कुछ मेरा है।

रंग खुशबू फूल महक ना ही देखी कोई सज धज, सूखे पत्ते सी भटक रही है जिंदगी जैसे कोरा कागज।